0: अरे ओ सां बाबम, भोर हुई गवा। कांवर पूजा के लिए पंडा बाबा को बुलाए के लिया।
1: गबरू बम, पंडा बाबा का गोइलन?
0: अरे ओ सां बाबम।
2: जी सरदार बम।
0: जरा दक्षिणा तो दे दे रे।
3: हाँ यो, 100 रुपया दे छे यो।
0: अरे ओ सां बाबम, 100 रुपया क्यों दिया रे?
2: सरदार बम, जब आप डाकू थे तो 100 रुपया ही देते थे।
3: अच्छा बम, चढ़ाई हो जल, हमें ऐसा 100 रुपया सवा 100 समझ लेबे, और की करबे।
0: पांडे बाबा बम, बड़ी दूर दूर से कमरिया लोग हाजिर हैं। क्या नाच हो रहा है, क्या गाना बज रहा है, ऐसा लागत है।

मस्ती में कांवरिया सब नाचे छे गावे छे पूरब दरवाजा पर सब ढोल बजावे छे। हाँ पूरब दरवाजा पर सब ढोल बजावे छे।

0: बाबा के जैसा कोई गाली है क्या? अगर बाबा से जो छोटे हैं पर दोनों हाथ उठाने चाहिए, जो बाबा से छोटे हैं, बाबा से जो छोटे हैं वो हाथ उठाएंगे।
1: यहाँ ऐसा लग रहा था कि सभी बड़े हैं बाबा से,
0: बाबा से जो छोटे हैं
1: तो दोनों हाथों को उठा लीजिए
0: एकदम सीधे सीधे। जितना हाथ लंबा उठाएंगे उतने दूर जाएंगे, मतलब तरक्की की राह में, ऊपर नहीं जाएंगे, तरक्की की राह में। बोले बाबा बैद्यनाथ की। अरे अरे ना हमरा।

बाबा के जैसा तीन लोग में कोई है क्या? कोई है पृथ्वी पे बाबा के जैसा? तो दोनों हाथ उठा करके, अगर लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं है तो दोनों हाथ उठा करके और कहना चाहिए जी।

0: बोलो बाबा बैद्यनाथ की।
1: सॉरी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो 500 रुपया लेकर आए थे, सब चले गए क्या? अरे मैंने गाने के बीच में नहीं लेता, बाद में तो लेता हूँ ना। एक एक ने दिया तो मैंने रख लिया, बाकी कहाँ गया? ए ढेर सारा था, सब रख लिया पॉकेट में।

बम बम गाइए मेरे साथ बम बम यस बहुत बढ़िया बम बम बम बम बम बम बम शिव जी का डमरू।

0: चाहती हूँ आप लोग गाए, इधर तो हम सभी लोग गाते रहते हैं, इधर भी गाना चाहिए। सिर्फ सिर्फ सिर्फ वो बजाई बगल बच्चा क्या बोलते हैं, डमरू, हाँ बस इतना ही बजे और किस बजे
1: कंफ्यूज हो जाएंगे।

0: बाबा के जैसा कोई गाली है क्या? अगर बाबा से जो छोटे हैं पर दोनों हाथ उठा चाहिए, जो बाबा से छोटे हैं, बाबा से जो छोटे हैं वो हाथ उठाएं।
1: यहाँ ऐसा लग रहा था कि सभी बड़े हैं बाबा से।
0: बाबा से जो छोटे हैं
1: तो दोनों हाथों को उठा लीजिए
0: एकदम सीधे सीधे, जितना हाथ लंबा उठाएंगे उतने दूर जाएंगे, मतलब तरक्की की राह में, ऊपर नहीं जाएंगे, तरक्की की राह में। बोले बाबा पैदनाथ की। अरे ना हमारा जैसा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You are listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना।

0: से।
1: दो मिठियां गल्लां कर कुड़िए हंस के साडे नाल अरे साथ खड़े हम दोनों लगते हैं सोनी महिवाल। लड़की हसीन हो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चोर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड। बस ओल्ड इज गोल्ड मतलब ओल्ड गोल्ड ही होते हैं, है कि नहीं। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम होने वाला है आज का, क्योंकि सभी दोस्तों के गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। और एक बात बता दूं कि आज हमारे MS परमार सर जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दिया। दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और बहुत से दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफराज भाई यानी सरफू भाई साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। उनके बाद सर्वजीत सेठी जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और उनके बाद जुड़े हैं हमारे राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये है मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ हमारे ये प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओम नारायण राय जी, जी बिल्कुल सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं क्योंकि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट यानी लाइव शो में ही मैं ले रहा हूँ, इसीलिए भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात मैं बता दूं कि काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपके भी। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम करते हैं प्रमोद कुमार जी। आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ हमारे नंदलाल यादव जी गाजीपुर यूपी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी जलील जी। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी बबीता जी। और गजानंद सलोकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते,
0: नमस्ते जी,
1: हम भी जुड़े हुए हैं आपका अपनी संग, बहुत अच्छा लगा,
0: थैंक यू।
1: और आरजे परमार जी का जन्मदिन का हैप्पी बर्थडे टू यू, ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे और खुश हमें हमेशा मस्त रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यार, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम करते हैं। शेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं, ये कोलकाता से लिखते हैं कि चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, लिखते हैं कि चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो और सांसों में खुशबू बनकर बिखर जाते हो, अब तो इतना तड़पाते हो कि तुम्हारा ही ख्याल कि जब भी आंखें बंद करूं तो सामने ही तुम नजर आते हो, आए हाय क्या बात है। और शाहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत मतलब इन्होंने बहुत लंबा मैसेज लिखा हुआ, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रेडियो हॉट स्टार के दीवाने और दीवानियों को, मैं शाहनवाज खान हैदराबाद से, लिखते हैं रेडियो हॉट स्टार का ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम दिल को सुकून देने वाला है और पुराने नगमों की वो सुनहरी यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं, आवाज़ में जादू है और गानों के चयन में एक अलग ही मिठास है और सच में ये प्रोग्राम बीते हुए सुनहरे दौर में वापस ले जाता है। ओल्ड इज गोल्ड सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक एहसास है, रेडियो हॉटस्टार पर जब ये बजता है तो हर धुन में दिल को छू जाती है और पुराने गानों का खजाना और शानदार पेशकश दोनों लाजवाब हैं और ये प्रोग्राम मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम है, था, है और रहेगा, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होता रहूँगा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा मैसेज के लिए शाहनवाज खान जी। और मोहन निवारे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हेमलाल निशा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आज के कौन से गीत से जरा सा मुझे देखना पड़ेगा लिस्ट, मतलब लिस्ट तो नहीं बना रहा हूँ लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आई है, हाँ इसके हिसाब से मीना इब्राहिम जी का गाना मुझे दिख रहा है, क्योंकि तुमने पुकारा और हम चले आए हैं, वाह क्या बात है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: रख दो।
1: क्या बात है।
0: ए मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
1: बोलो बोलो बोलो।
2: तुमने पुकारा।
1: अच्छा
2: हम चले आए।
1: थैंक यू।
2: जा

0: है तुम।
1: Hey, thank you so much।
0: मुझको छूना मेरी नस नस में शरारे भर
1: गए। Hey, hey, hey, hey।
0: मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले।
1: क्या बात है।
0: मैं

0: बिल्कुल तुमने पुकारा और हम चले हैं। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहती हैं, वेलकम है आपका।
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग
1: अमन जी, आज आपने स्टार्टिंग में जो दो सॉन्ग सुनाए मैंने प्यार किया के, वो दोनों ही सॉन्ग मेरे फेवरेट हैं।
0: अच्छा।
1: और मेरी मूवी भी फेवरेट है, उसके लिए मैं पहले मैं फर्स्ट सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा।
1: यहाँ का मौसम बड़ा हसी है फिर भी प्यार उदास है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उनसे कहना दूर सही में दिल तो नी के पास है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ये संदेश सा उनको सुनाना, मैं पीछे आया कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा। और उसके बाद आपने जो दूसरा सॉन्ग सुनाया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा अच्छा।

0: लग रहा है जादू चल गया, झड़ी लगने वाला है,
1: चेहरा खिल गया, पीछे पीछे मैं चली, आगे आगे तू चला। ये दोनों सॉन्ग ही बहुत अच्छे थे, थैंक यू इतने अच्छे सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी, और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं इनके भी सुनते हैं।
2: अमान सर जी, मीना इमराम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं सर।
0: वेलकम जी आपका, और साथ ही साथ मीना जी लिखते हैं मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, और हेमलाल निषाद जी लेते हैं कि आपका प्रोग्राम ने पुकारा और हम चले आए हैं, ओ थैंक यू सो मच हेमलाल निषाद जी। गजानंद जी लेते हैं कि मीना इब्राहिम जी के पसंद, तुमने पुकारा और हम चले आए हैं, गीत बहुत लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आपको गीता सर ये बसंतपुर सीतामढ़ी बिहार से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और लिखती हैं कि लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है आपका, थैंक यू सो मच आपका भी गीता जी। और अशिल्पा बहन जी लिखती हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए हैं, बहुत ही बढ़िया गाना लगा है मुझे, बहुत ही पसंद है ये गाना मुझे भी। और साथ ही साथ एमडी जलील जी लिखते हैं कि शानदार सॉन्ग है, थैंक यू सो मच मीना जी आपका। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में ये प्रोग्राम का यानी पहली फरमाइश सुपर डुपर हिट रहा जी, वर्ल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि यहाँ कौन कहता है कि हमें आपकी याद नहीं आती, अच्छा लिखते हैं कि कौन कहता है कि हमें आपकी याद नहीं आती है, आपको ना सोचे ऐसी कोई रात नहीं जाती है, और वक्त गुजर जाता है आदतें नहीं जाती हैं, आप खास हो यह बात सबसे कहीं नहीं जाती। अच्छा वाह बहुत प्यार लिखा आपने। मोहन हमारे जी लिखते हैं कि मीना जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं उनका। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: शाम का सो आया,
0: अच्छा
3: हम चले आए,
0: अच्छी बात है,
3: रेडियो हॉट स्टार लगाए, लेकिन क्या करें थोड़ा सा लेट हो गए, इसके लिए सॉरी। और अमन सर जी आपको नमस्कार, मैं जुड़ गया हूं आपके शो में और बाकी लोगों के साथ भी पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाऊंगा, धन्यवाद सर जी।
0: वेलकम जी आपका भी, और हमारे राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर डिमांड, इसी बात पर जो डिमांड है हमारे एस के मोहम्मद ताहिर जी कोलकाता से सुनना चाहते हैं, ये बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म इन कुदरत से ये गाना है, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, सुनिए।

0: वाह।
1: अच्छा।

0: तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, बहुत ही प्यारा गाना है, क्यों है ना। और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं, तो आप भी लिखते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, मीना जी के पसंद बहुत ही लाजवाब लगा है। और यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, ओल्ड इज गोल्ड सच में। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो, ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था।
0: अच्छा,
1: तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मते वाला जिया, बाहों

0: दुनिया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: नए हैं नजारे, नए इशारे, रहे ना वो कले वाली दुनिया। ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू इतना अच्छा सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए। और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट मैंने भी की है, जो कि प्लीज आप मुझे सुना दीजिए।
1: ओके, मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को सुनाने के लिए। और प्लीज यहाँ पे जुड़ चुके हैं, नाम है इनका सुरिंदर पाल इन भोला जी, ये है यानी कि पंजाब से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना सुनवाने के लिए। और साथ ही साथ हमारे हेमलाल निषाद जी लिखते हैं कि आपकी आवाज़ ने ऐसा जादू किया है अमन जी, यानी बोले हमारा जिया, नाइस सॉन्ग है। ओके, थैंक यू सो मच आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह वाह वाह क्या डिमांड है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और गजानंद जी लिखते हैं कि तूने वो रंगीले कैसे जादू किया, ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर्वजीत शेट्टी लिखते हैं कि कार्यक्रम का आगाज शानदार हुआ है। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, ये गाना जो है कि कभी भी सुनने पर ये अच्छा ही लगता है। और जिसने भी ये फरमाइश किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद सर आप गाना को प्ले किए।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे हुकुमचंद जांगड़ जी का है, सुनना चाहते हैं ये कुंवारी अलबेली, क्या मतलब क्या गाना है, मतलब इस गाने की जितनी तारीफ करें ना बहुत ही बहुत कम है। इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और शिल्पा पे लिखते हैं कि तूने और अंगीले कैसे जादू किया, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और हम पर भी रेडियो हॉटस्टार ने जाने कैसे जादू कर दिया। अच्छा सच में का? और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, हुकुम चंद जांगर जी अपने गाने में शामिल थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका। और निशांत राय बोले जी, बहुत ही बढ़िया गाना है, वाह क्या दिल खुश कर दिया इस गाने ने। विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका। लिखते हैं कि और अमन जी, मैं विष्णु चंद्र यानी कि कमल, और अमन जी हम भी जुड़ गए हैं और आपकी करीब यानी कि 4-5 महीने से पहले से मैं आवाज़ में जो फर्क था वो कुछ आवाज़ यानी मोटी थी और अभी तो यानी पतली हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जैसे मैं पहले था वैसे अभी भी हूँ, ना पतली हुई है ना मोटी हुई है, जैसा था वैसा ही है। मोहन निवारी जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देता हूँ इस गाने के लिए। और हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि मैं कुमारी अलबेली, बहुत ही प्यारा गाना है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में सुनकर मज़ा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हेमलाल निषाद जी लिखते हैं कि वह क्या गाना चला है सर जी, पापी ततैया नाइस सॉन्ग, सुनकर मज़ा आ गया है। और अनिल कश्यप जी क्या गाते हैं।
2: अमन भैया, तो घर से हड़बड़ा कर निकलने की क्या ज़रूरत थी, जब ततैया का डर है तो थोड़ा सा अपना सेफ्टी लेकर चलना चाहिए, मास्क पहन लेना चाहिए और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट लगा लेना चाहिए,
0: वो तो ज़रूरी है।
2: और क्या, यही सजेशन हम दे सकते हैं यहाँ से।
0: बिल्कुल आप सही सजेशन दे रहे हैं। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाने को प्ले कर दिया है। दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा फीडबैक देने के लिए, प्यारे प्यारे। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और प्रकाश जी लिखते हैं कि मस्त गाना है जी, और ये गाना चूंकि यानी कि काजल झक्का जी को भी पसंद है इसीलिए कह रहे हैं कि ये थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। शौर्य सिंह जी लिखते हैं कि फैंटास्टिंग पसंद है, अच्छा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गीता शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, मज़ा आ रहा है सुन के, आगे सुनिए और भी मज़ा आने वाला है। और नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड है राधा कृष्ण गोप जी का ही सुनवा रहा हूँ मैं, ये एक चीज़ मांगते हैं, पता नहीं पहले चीज़ का नाम पूछते हैं फिर बताते हैं, इंजॉय कीजिए।
3: चीज़ मांगते हैं
4: क्या?

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। यहाँ पे सरोज भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, राधा कृष्ण गुप्त जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं सर।
0: वेलकम किया आपका भी। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि रिसेंटली प्ले नाइस सॉन्ग, अच्छा। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि एक चीज मांगते हैं हम तुमसे, पहली बार शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। गीता जी लिखती हैं कि एक चीज मांगते हैं, गाना बहुत अच्छा लगा है। ओके जी। और अमीना जी लिखती हैं कि वाह क्या बात है, क्या गाना है। और निशांत राय बोले जी, अरे उधर आप भेज चुके हैं ऑलरेडी, तो मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉन्ग रिक्वेस्ट में ही आपका गाना मिल जाएगा, वहीं पर भेजना है, जो भी भेजते रहिए, यहाँ नहीं, मैसेज में नहीं। और कुछ दोस्त इन मैसेज में भी भेज चुके हैं इन पहले से, कोई बात नहीं है, मैं उनका गाना ले लूँगा। और प्रकाश जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ना, यानी मैसेज वाला मैं भूल जाता हूँ। मेरे पास एक मैसेज में है हमारे एक शाहनवाज जी का, एक हमारे अशोक देशमुख जी का ग्रुप, यानी कि हमारे फुले मतलब क्या कहते हैं, सर्वेश भगत जी का, अशोक देशमुख जी का, आत्माराम पाटिल जी का और सैयद यूनुस जी का है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि और काजल झकास जी का है, और भी कुछ कुछ है जो मुझे देखना पड़ेगा, जो मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, यानी कि प्रियंका जी का भी है, और भी मुझे अब चूँकि लिस्ट में मैंने मतलब ये लिस्ट तो बनाई नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है ना। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इसलिए जो भी डिमांड करना है प्लीज़ सॉन्ग रिक्वेस्ट से ही किया कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस करें, थैंक यू सो मच। अभिषेक मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि वाओ नाइस सॉन्ग है, मस्ती भरा गाना ये लगा है मुझे। और नीतू सरन जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि एक चीज़ मांगते हैं हम तुमसे, पहली बार शानदार गाना सुनकर मिला, मज़ा आ गया है। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि बाबुल की ये गलियां फिल्म से ये गाना, ये किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में लाजवाब सुपरहिट डिमांड। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, वो सुनना चाहते हैं, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, याद बहुत आते हो, सच में कहा।

0: बिल्कुल, तुम भी याद बहुत आती हो सुंदरता की मुरत जी। और यहाँ पे निशांत राय बोल लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी, ओके जी। और गीता जी लिखती हैं कि ये रिक्वेस्ट करने वाले दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी पसंद है उनकी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस के लिए थैंक यू सो मच सरभजी सेठी जी। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ ऑसम, बहुत खूबसूरत गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही शानदार गाना, बहुत मजा आया सुन के। मोहन भाई लिखते हैं कि सारा दिन सताते हो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और नीतू शरण जी लिखती हैं कि ये गाना भी लाजवाब है, ओह थैंक यू सो मच आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार और सुपर नगमा है। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं इनकी,
1: ये तो गलत बात है, सारे आरोप हम पर ही क्यों लगेंगे।
0: और यहाँ पे काजल झा जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो गीता जी की पसंद है, और गीता जी सुनना चाहती हैं तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

0: बिल्कुल एक ही बोली है दुनिया में प्यार की। वैसे बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी का। और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार, जो आपका दीवाना बना दिया। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ सर्विस भगत जी क्या कहते हैं,
1: अरजय अमन सर जी, सर्विस सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर हम लोग का तो संग से जाता ही नहीं है, बहुत ट्राई करने के बाद उसी पर भेज दिए मैसेज वाला पर।
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपका मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, मैं आपका मैसेज से शामिल करूंगा। लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट आपके पास क्यों नहीं आता है? ऐसा तो किसी के में कोई अभी तक किसी ने प्रॉब्लम बताया नहीं है कि जब तक सब लोग भेजते हैं सभी का आ जाता है, आप ही लोगों का क्यों नहीं आता है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। और जबकि मैंने यहाँ पे चेक भी किया है, मैंने खुद से भेज कर भी चेक किया हुआ है, आराम से जाता है, नो प्रॉब्लम होता है। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी, वो कौन सा गाना है जरा मुझे बताइए बबीता जी, क्योंकि मैं अभी ऑडियो प्ले नहीं कर सकता। अच्छा ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। और आशीर्वाद बहन लिखते हैं कि ये तेरे मेरे बीच में बहुत ही बढ़िया गाना है, गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा है। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि गीता जी के पसंद, तेरे मेरे बीच में कैसा ये बंधन, अनजाना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर डिमांड है गीता जी, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और प्रियंका जी क्या कहती हैं,
2: हेलो अमन जी, ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था,
0: मुझे पता है।
2: पहन

0: थैंक यू इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गीता, ये गीता जी लिखती हैं कि अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका मीना कुमारी जी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये कमल हसन एंड एस पी बालसुब्रमण्यम की और लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही शानदार गाना, फिल्म एक दूजे के लिए। और यहाँ पे निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगा है जी, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही बेहतरीन पसंद है। और निकला जी जुड़ चुके हैं डेनमार्क से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, लिखते हैं कि वंडरफुल प्रोग्राम चल रहा है। और ये विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी अमन जी आपने यह काजल झक्का जी का मतलब जी एक्चुअली वो क्या है, मतलब उनका नाम है उनका मेन नाम है मतलब यानी कि काजल झा, मैं उनको कहता हूँ काजल झक्कास। ओके, झा को मैंने झक्कास बना दिया है। और लिखती है काजल झक्का जी के हाथ से हाथ मिलाकर लकीर देखती हूँ, लिखती है कि हाथ से हाथ मिलाकर लकीर देखती हूँ और आपके आगे तो मैं खुद को फकीर देखती हूँ और रब जैसा मोहब्बत आपसे हो गया है। लिखती है कि रब जैसा मोहब्बत आपसे हो गया है, मैं आईना देखने से पहले आपकी तस्वीर देखती हूँ। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और दोनों दोस्तों का गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे ये रवि मोहड़े जी और गजानंद जी जो सलोकार जो यानी ग्रुप है उनका ये डिमांड है और सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना फिल्म नागिन का, वो है तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सच में यानी तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और फिलहाल मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो फीडबैक शामिल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी,
1: आरजे अमन सर जी, गजानन सोलकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को धन्यवाद देते हैं। ओके, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और और और और और, और यहाँ पे राजू यादव जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: आदरणीय आरजे अमन सर जी, हम समय आपका
0: बहुत बारिश हो रही है।
2: मेरा प्यार हरा राम नमस्कार।
0: ओ माय गॉड, आपके तरफ ऐसा यानी कि लग रहा है कि बहुत जोर की बारिश हो रही है, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। और मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना था तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये गजानन जी की ग्रुप की पसंद सुपरहिट लगी है, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानन जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि ये तेरे संग प्यार वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत ही खुश और डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि रवि मोहड़े जी और गजानन जी का ग्रुप की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद, सुनकर मजा आ गया है। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: अमन जी ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं
0: तब ये हाल है आपका
3: सॉन्ग मतलब सुना रही हूँ।
0: अच्छा,
3: आपका प्रोग्राम ही इतना अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा,
3: पर सभी सॉन्ग बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए बिना सुनाए नहीं रहा जा रहा है।
0: अच्छा,
3: मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और न जा

0: पीछे पड़े जग छोड़े ना, नाइस सॉन्ग
1: जी, बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। और थोड़ा छोटा छोटा गुनगुना कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अनिकला जी लिखते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है गाना। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की हैं, अपनी सोई हुई वो तकदीर से बातें की हैं, और तेरे दीदार की हमने वो क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तो तेरी तस्वीर से बातें की हैं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और बबीता जी लिखते हैं कि ये ग्रुप वाले दोस्त की डिमांड बहुत ही अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है ओल्ड इज गोल्ड। राजू यादव जी लिखते हैं कि बारिश नहीं हो रही सर जी, यानी कूलर चल रहा है। अच्छा, ओ कूलर चल रहा है इसीलिए आवाज़ साफ स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। यहाँ पे गीता जी लिखती हैं कि ये काजल जी की आवाज़ बहुत अच्छी है जी, अभी तो यानी कि काजल जी ने आवाज़ में अपने भेजा ही नहीं है, ये आप जो सुन रही हैं ये आवाज़ है यानी प्रियंका जी की। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी पूजा भास्कर जी का है, और पूजा भास्कर जी सुनवाना चाहती हैं ये गाना। इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। फीडबैक सुनते हैं अकबर खान जी का।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन जी।
0: सलाम जी।
1: क्या लाजवाब गीत सुनाया।
0: अच्छा कौन सा?
1: फिल्म नागिन का।
0: अच्छा अच्छा,
1: महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़।
0: बिल्कुल,
1: दो लाइन गुनगुना रहा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे पड़े जा...

0: लाजवाब सॉन्ग अमन जी।
1: जी जी जी जी बिल्कुल
0: गजानन जी और उनके सारे ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, और इसी बात पर अगला जो हमारे पास फीडबैक है वो निशांत राय बोले जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: आरजे अमन सर जी, पूजा भास्कर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको अभी धन्यवाद देते हैं और अभी सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेजे हैं तो अभी चला गया सर, इसमें वॉइस नहीं है लेकिन मैसेज वाला में वॉइस है।
1: जी आ चुका है मेरे पास आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट में, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही शानदार गाना है जी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर गजानन जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी के पसंद बहुत बेहतरीन लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। मंगेश दसमुख जी लिखते हैं अमन जी हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि वाओ क्या डिमांड है, बहुत धन्यवाद देते हैं पूजा भास्कर जी को। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि एक दूसरे से खफा होना नहीं, बहुत ही बढ़िया गाना है। और राजू यादव जी लिखते हैं कि ये परछाई आपके हमारे दिल में है, यादें हमारी आंखों में है, और कैसे भुलाएं आपको एक पल के लिए, आपका प्यार हमारी सांसों में है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। गीता जी लिखती हैं कि आज के सभी गाने मज़ेदार चल रहे हैं। अगला भी सुनिए, वो शाहिद अंसारी जी और शौर्य सिंह जी का पसंद है, बहुत ही प्यारा गाना है ये गाना, इंजॉय कीजिए। चाहिए तेरा साथ।

0: लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस गाने को लिख कर रखता हूँ। अगर कोई और गाना नहीं मिलेगा तो इस गाने को मैं यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे बनाऊंगा। अब चाहे दो आदमी को बनाना पड़े, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे अभी मुझे प्रोग्राम को सुनने दीजिए। और गजानन जी लिखते हैं कि अकबर खान जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मोहब्बत थी तेरी या आदत थी मेरी, अब दोनों ही नहीं है, अब दोनों ही नहीं है और दोनों की है इन कमी। वो शख्स जो मेरी कहानी के हर हिस्से में आया, वो मेरा होकर भी वो मेरे हिस्से में ना हो सका। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक मेरे पास लाइन था इसके लिए, अभी तो मैं भूल रहा हूँ इसको, मैं फिर कभी आएगा याद आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल फीडबैक सुनते हैं।
1: जय माता जी, सूर्य सिंह जी और साहिद अंसारी जी दोनों भाई मिलजुल प्रवास में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और रवि मोहन जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमरसा जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद अच्छे अच्छे फीडबैक देने के लिए। और निशांत राय मोहन लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सूर्य जी और साहिद जी के पसंद बेहतरीन लगी है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, डेडिकेट करने के लिए। और सौर्य सिंह जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत इलाजवा डिमांड है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निकला जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच आरजे आकांक्षा जी, अच्छा ओके। और गीता जी लिखते हैं कि ये गाना कुछ अलग हट कर है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये हमेशा अलग हट कर ही गाना भेजते हैं हमारे शाहिद जी। और मीना जी लिखते हैं गाना बहुत ही शानदार था, सच में लाजवाब था, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काजल झक्का जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। गजानंद जी लिखते हैं कि ये सूर्य सिंह जी और साहिद जी के पसंद बेहतरीन और लाजवाब है। और निकला जी लिखते हैं थैंक यू सो मच आरजे, फिर दोबारा एक ही मैसेज आपने भेज दिया, कोई बात नहीं। अगला जो डिमांड में यानी कि प्रमोद जी का प्ले करने वाला हूँ, प्रमोद जी सुनना चाहते हैं छुई मुई, ऐसा कुछ गाना है छुई मुई हो गई, तो भाई प्रमोद जी इन्जॉय कीजिए इस गाने को, छुई मुई हो गई।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मुस्कान के पीछे जो जड़ ये लिखते हैं कि मुस्कान के पीछे जो दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं देता और सब कहते हैं यानी खुश रहो पर कोई पूछता क्यों नहीं कि उदास क्यों हो। और दर्द और तकलीफ तो जिंदगी का हिस्सा है पर यानी प्यार ही जब दर्द बन जाए तो इलाज क्या करें। जी अभी तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और रणवीर सिंह जिन्हरा लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और गीता जी लिखते हैं कि ये गाना मैं पहली बार सुना। जी यहाँ पे कुछ कुछ गाने ऐसे सुनने को मिलेगा जो पहली बार ही सुनने को मिलता है, जैसे कि मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। और ये फीडबैक
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। आरजे परमार सर जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो सुनते रहे रेडियो होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और देवराय जी जुड़ चुके हैं, भाई आप लोगों को मिस करें, आपके पूरा ग्रुप आज गायब है, पता नहीं कहाँ है आपका पूरा ग्रुप, यानी कि देवराय, रॉय पर्वत, अजय भगत, मतलब सभी कोई गायब है। ओके आपका भी वेलकम है देवराय जी। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद बहुत अच्छी चल रही है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। शाहिद अंसारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ निषाद राय वो लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही शानदार है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरे गाने को प्ले करने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद दोनों जी।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है बालिका वधू और गाने का बोल है ओ झुमके वाली ओ ठुमके वाली। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट है और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और सर्वेश भगत जी का भी ऑडियो सुन लेते हैं क्योंकि इनका भी ऑडियो है और बाकी लोगों का तो मैसेज ही है।
3: अजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बालिका वधू और गाने का बल है ओ झुमके वाली ओ ठुमके वाली, जरा चल के बता। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, अनंत प्रकाश, सोनी कुमारी, मीनू कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे एम एस परमार जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल सभी को सलाम जी।
4: और झटपट झटपट नाच दिखा।
0: ओके एंजॉय कीजिए।
5: अरे तो निकल तेरा डब्बा और हो जा शुरू।

0: ओ झुमके वाली। ओ झुमके वाली, ओ ठुमके वाली,
1: बोलो।

0: वेलकम बैक और मेरे पास फिर बैक आए हुए हैं और ये देवराज लेते हैं कि ये तेरी यादों का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि शराब भी अब फीकी लगती है। अच्छा जी, और गजानंद जी लेते हैं कि अदरिया सुखदेश मोदी सुरेश भगत जी आत्माराम जी सहित जी के वचन बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं सभी को। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये ओ ठुमके वाली गाना मुझे अच्छा लगा है। सर्वेश भगत
1: जी, अपन सर जी
0: बोलिए,
1: धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हम चारों भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयदुल जी और हमारा चारों भाई का अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए। थैंक यू, धन्यवाद,
0: वेलकम जी आपका भी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी बहुत ही लाजवाब गाना सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। रवि जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि हमारे अजय भगत जी और पर्वत दिनेश राय वो सभी तो देवघर वहाँ चले गए हैं और बाकी हमारा यानी कि मंडे आज बिजी था। अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, कोई बात नहीं, अभी भी भेज सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप भेज सकते हैं उधर सॉन्ग रिक्वेस्ट में। अशोक देशमुख जी क्या,
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सुनकर सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निमोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी। और गीता जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, ये फिल्म बहुत अच्छी है और रिक्वेस्ट करने वाले दोस्त को धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही अच्छा गाना लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किनका, ये MD जलील जी का। MD जलील जी क्या सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं मेरे महबूब का बाकपन। अच्छा सुनवाते हैं इस गाने को, इसके बाद से देखते हैं।

0: अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम है आपका। और रणवीर सिंह जड़हला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गीता जी लिखते हैं कि मज़ेदार गाना है, अच्छा। और अनिल जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही लाजवाब गाना, सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, ओके। और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई मेरे दिलदार का बागपन, अल्लाह अल्लाह गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं एमडी जलील जी को। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये दीदारे यार फिल्म का गाना रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन लगे, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी का सुनना चाहता है, ये कौन सा गाना है जरा सुनवाता हूँ मैं।

0: वाह
1: चोलियों में वो शर्मीलापन।
0: अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए हमारे नंदलाल जी का गाना सभी दोस्तों के लिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो एमडी जलील जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और रवि जी लिखते हैं कि मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से। अच्छा, मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, और मुझे शराब पिलाई गई आंखों से, और मेरा नशा है हजारों यूनिवर्सों से उतरेगा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? मुझे पता ही नहीं है, ये फीडबैक सुनते हैं फिलहाल।
1: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और साथ ही साथ नंदलाल जी लिखते हैं, अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं, बहुत लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। शाहनवाज जी लिखते हैं कि दो वक्त की रोटी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये काफ़ी दिनों के बाद सुनने को मिला है, बहुत बेहतरीन फरमाइश है। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये कैसी थी वो नज़र, बहुत बढ़िया गाना है। और निकला जी लिखते हैं कि वाह व्हाट ए वंडरफुल चॉइस, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
2: बहुत ही लाजवाब गाना, एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं, शुक्र गाने की फरमाइश चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आरजे अमन सर को इतना अच्छा प्रोग्राम सुनाने के लिए।
0: वेलकम है आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, इसी बात पर अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, सुनना चाहती हैं। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, बिल्कुल लगा लूंगा।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना। तो बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। गजन अंजलि सिंह का आमना खान जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब लगी, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून और तेरा साथ हो, हर लम्हा है खूबसूरत और तेरे बिना अधूरी है ज़िंदगी मेरी, और जैसे बिना चांद के रात अधूरी होती है। अच्छा, और यहाँ रणवीर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, अच्छा लगा ये गाना सुनकर। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और शाहनवाज जी लिखते हैं डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, ये मूवी का ओल्ड इज गोल्ड गाने की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, रोमांटिक गाना जी, बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ऐसे ना मुझे तुम देखो, बहुत ही अच्छा लगा है। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निकला जी लिखते हैं कि ऑल वंडरफुल चॉइस है, थैंक यू सो मच आपका भी। और निकला ये अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आमना खान जी का डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड जो है मैं प्ले करने वाला हूँ। और ओके, तो ये है, आप पहले इस गाने को सुनिए फिर आते हैं। ये गाना है हमारे यानी कि जाकिर खान जी का।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब

0: बिल्कुल मेरे देश में पवन चले पुरवाई और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं जाकिर जी के पसंद बहुत अच्छी लगी, जिगरी दोस्त का गाना मुझे अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरे देश में पवन चले पुरवाई गाना मुझे अच्छा लगा है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, पवन चले पुरवाई। ओके जी। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये जिगरी दोस्त का गाना बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ओल्ड इज गोल्ड डिमांड। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और ये राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि तू हंसे तो मेरा दिल खिल उठता है और तू रूठे तो मेरी रूह तक रो उठती है। क्या बात है, लगता है दिल से लिख रहे हैं। और निकला जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। इसी बात में अगला जो डिमांड है ये विष्णु चंद्र जी का है, और विष्णु चंद्र जी सुनना चाहते हैं ये राजपूत का गाना।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो अशोक पाजी लिखते हैं, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड क्लासिकल सॉन्ग। राहुल पाजी लिखते हैं कि ये राजपूत का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये विष्णुचंद्र जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और खुशबू कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और यहाँ पे काजल झा काजी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी। बिल्कुल इसी बात पर जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है भाई। फिलहाल थोड़ा सा चलिए मौज मस्ती में चलते हैं, और यह निक्की परवल मिश्रा जी का गाना मैं प्ले करता हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: अच्छा
1: हाथों में चाबुक होठों पे गालियां,
0: हाय हाय क्या बात है।

0: कोई हसीना जब टूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
1: वेलकम बैक, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और जाकिर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है। और गजानन जी लिखते हैं कि ये कोई हसीना जब रूठ जाती है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा शोले फिल्म का। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा शोले फिल्म का। साथ ही साथ राहुल पासी जी लिखते हैं कि शोले फिल्म का ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं ये परवल मिश्रा जी को। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: मिस्टर अजय अमन,
1: यस सर,
2: यू आर सिंगिंग लाइक द प्लेबैक सिंगर नेम इज सुधीर कुमार।
1: अच्छा,
2: your sound like this, you're singing really,
1: thank you so much,
2: you should be a playback singer.
1: Oh my god,
2: Ajay Aman,
1: thank you so much. ओके जी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि शोले फिल्म का लाजवाब फरमाइश, सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के। और खुशबू जी लिखते हैं कि नागिन पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है अनिल मेहता जी का है, सुनना चाहते हैं कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को जो मेरा फेवरेट गानों में से एक है।

0: वेलकम बैक। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि ये मजेदार प्रोग्राम चल रहा है, लाजवाब गाने सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच गीता जी आपका। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
1: अरे मनुआ,
0: हाँ जी,
1: ये रेडियो स्टार वाले कौन से चक्की का आटा खाते हैं रे? बढ़िया बढ़िया गाना सुना रहे हैं रे।
0: अच्छा जी, क्या बात है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये कौन दिशा में लेकर चला रहे बटोरिया गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद देते हैं उनको। और साथ ही साथ अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये कौन दिशा में लेकर चला रहे बटोरिया गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और आमना खान जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं?
2: जय अमन सर जी, अनिल मेहता जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
3: साथी मित वाया नाड़ी कहो गोरिया।

0: बहुत ही सुंदर फरमाइश। और मुझे लग रहा है कि जो भी भैया अगर बिहार से बाहर के भैया हैं तो उनके लिए तो लिट्टी चोखा बनता है हमारी ओर से। अच्छा, धन्यवाद गाना बजाने के लिए भी आपको अमन सर जी।
1: जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मीना जी लिखते हैं वाव वाव, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे खुशबू कुमारी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग। और गीता जी लिखते हैं कि लाजवाब ये पसंद चल रही है। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ किनका ले लूँ मैं, जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ ये इसमें तो थोड़ा सा समय लग सकता है डाउनलोड होने में, कोई बात नहीं। अगर फिलहाल मैं इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ, अगर तुम ना होते, इंजॉय कीजिए। और ये किसकी डिमांड है मैं बता रहा हूँ। ये डिमांड है हमारे अशोक पाल जी का। अशोक पाल जी, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। परी जी मतलब सुंदरता की मुरत जी, बिल्कुल अगर तुम न होते तो हमें जीने की चाहत न होती। फिर
1: अजय अमन सर जी, अशोक पाल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं अशोक पाल जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजानंद जी लिखते हैं अशोक पाल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, बहुत ही प्यारी डिमांड है। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत ये गाना है। और आमना खान जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और गीता जी लिखते हैं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, लाजवाब पसंद है ये गाना। और काजल सरकार जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शाहनवाज जी लिखते हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने नहीं मिलते अगर रेडियो हॉटस्टार तुम ना होते, बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और खुशबू जी लिखते हैं वाह क्या लिरिक्स है इस गाने के, ये किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं यानी पहले दोस्त इन पार्टी मनाने के लिए मिलते थे तो सिर्फ इन पार्टी मनाते थे, अब तो इन पार्टी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके साथ एक दोस्त और मिल गया है रेडियो हॉटस्टार जो महफिल जमा दे और दीवाना बना दे। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी के बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और MD अयूब अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अयूब अंसारी जी। और लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जी बिल्कुल। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे किनका, ये शाहनवाज खान जी हैदराबाद से सुनना चाहते हैं ये गाना, और सभी को डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि इनका ऑडियो लंबा है।

0: बिल्कुल इब्तदाई इश्क में हम सारी रात जागे और अल्लाह जाने क्या होगा आगे, और यहाँ पे फिर गए
1: अरजी अमन सर जी, शहनवाज खान सर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ खुशबू कुमारी जी लिखते हैं कि इस गाने का सिंगर का नाम बताइएगा जी। इसका यानी कि सिंगर का नाम है मुकेश, ये मुकेश ही है इस गाने को गाए हुए हैं। और इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि इसमें हम सारी रात जागे, बहुत ही खुश और डिमांड है। थैंक यू सो मच शहनवाज जी को, वालेकुम सलाम। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय शहनवाज जी के पसंद इब्तदा इश्क में सारी रात जाएंगे, बहुत ही अच्छा गाना लगा है ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बहुत ही शानदार गाना है जी बिल्कुल। और आमना खान जी लिखते हैं कि वाह ये वर्ड इब्तदा इश्क में भी जी, मतलब इब्तदा मतलब होता है स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत, बिल्कुल आगाज है ना, तो यानी इब्तदा इश्क में यानी इश्क की शुरुआत में, इश्क की शुरुआत में, इश्क की इब्तदा में, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बस नींद नहीं आती है ना, एक दूसरे को मतलब बेचैनी होती है ना। ओके और जी बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और आपको अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि एक रात का मोहब्बत देखने के लिए मैं जागता हूँ, यानी तेरा ख्वाब देखने के लिए आया है, क्या बात है। एम डी आयू बंसारी जी लिखते हैं कि आपका अंदाज अलग है सर जी, ओह थैंक यू सो मच सर जी, आपको मेरी अंदाज पसंद आया। शहनवाज जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गाने की फरमाइश को प्ले कर दिया, और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे गाने को पसंद किया है और अपना प्यारा प्यारा सुंदर विचार फीडबैक शुभकामनाएं भेजी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके प्यार और उत्साह में मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उम्मीद है कि आगे भी आपका यूं ही साथ मिलता रहेगा, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आभार। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो खुशबू कुमारी जी का है, बहुत ही प्यारा गाना है, सुनैना ये सुनना चाहती हैं। इस गाने के बाद इट्स कुमार जी का गाना प्ले करूँगा, पर्दा है, पर्दा है।

0: बिल्कुल, मैं तुम्हें बस देखते हुए देखूं, और लेकिन इसलिए तो यानी कि पर्दा है, पर्दा गाना प्ले करने वाला हूं इस गाने के बाद, क्योंकि यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे, बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है मुझे। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, खुशबू कुमारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, वाह क्या शानदार लाइन है इस गाने की। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा लाइन है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि हमारे भी जी आपका भी सुनाने वाला हूं, अभी टाइम लगेगा आप में। और गजानंद जी लिखते हैं कि खुशबू जी की पसंद, ये खुशबू जी की पसंद यीशुदास की आवाज में बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और शाहनवाज जी लिखते हैं कि यीशुदास की आवाज में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच खुशबू जी। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि अरे बाबा देखिए, जब गाना आएगा तो मैं जरूर प्ले कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आएगा एक दो गाने के बाद मैं आपका गाना प्ले कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। एमडी अयूब जी लिखते हैं कि वाह सर जी क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया, आज सुर में सुर मिला दिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। और मीना जी लिखते हैं वाह इन माई लैंग्वेज इन पर्सन इब्तदा मीन्स शुरुआत। जी बिल्कुल सही है, इब्तदा का मतलब ही होता है शुरुआत, स्टार्टिंग, बिल्कुल। और यहाँ पे लिखते हैं इन खुशबू जी के, थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, गाने को पसंद करने के लिए। इससे बात अगला जो डिमांड है, इट्स कुमार जी का ये सुनना चाहते हैं, ये पर्दा है पर्दा, और अमर अकबर एंथोनी का बहुत ही लाजवाब गाना, इंजॉय कीजिए।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, हाँ
1: मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ,
0: हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूँ।
2: बिल्कुल अमन मेरा नाम नहीं है और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं और यहाँ पे आमना खान जी रहते की नहीं नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, एकदम अच्छा हूँ आप। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, लाजवाब सॉन्ग है बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं ये पर्दा है पर्दा मोहम्मद रफी की आवाज़ में, बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और समुंदा सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और निकला जी क्या कहते हैं,
3: थैंक यू सो वेरी मच खुशबू कुमारी, व्हाट अ वंडरफुल चॉइस मिस्टर यस सुदा।
2: Yes, sir.
3: Wow.
2: Yes.
3: Thank you, RJ Aman.
2: Yes, sir.
3: Wonderful program.
2: Thank you so much, आपका निकला जी। और इसाक जी लिखते हैं कि यानी खूब यानी पर्दा है इन चिलमन से कि लोग बैठे हैं, लिखते हैं कि खूब यानी पर्दा है कि चिलमन से लोग बैठे हैं और साफ छुपाते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, हम तो यानी कि तरसते ही रहे उनके एक नज़ारे को, वो तो जालिम हमें बेहाल बनाते भी नहीं और इश्क का खेल भी अजीब बना रखा है, दिल दुखाते भी हैं और आगोश में लाते भी नहीं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है भाई। निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत खूब बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और इस गाने को और काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। और MD अयूब बंसारी जी लिखते हैं कि मेरा नाम लेने के लिए धन्यवाद और आज आप फुल मस्ती में हैं। अच्छा ऐसा भी है क्या, ये फीडबैक सुनते हैं।
4: खफा हो के चेहरा छुपा ले।

0: बहुत लाजवाब गीत अमन भाईजान खास प्रोग्राम से हम भी जुड़ गए
1: और चुकी है अब यानी के यहाँ पे उठ चुका है यानी पर्दा, तो ये रूप चरा मस्ताना वाला गाना सुनी लेते हैं और इसके बाद एक और गाना है मतलब फिर मैं बता रहा हूँ कौन सा है, पहले ये गाना। ये सुनना चाहते हैं हमारे ये रविंद्र सिंह जेठालाल।
2: रूप तेरा मस्ताना प्यार में।

गाना प्ले करता हूँ मैं। ये फिल्म अब्दुल्ला का गाना है और जो मुझे बहुत पसंद है और सुनना चाहती है ये प्रियंका जी। मैंने पूछा चांस, एंजॉय कीजिए इस गाने को, फिर आते हैं फीडबैक शामिल करते हैं।

0: बिल्कुल, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, लेकिन बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आया। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अम्मा अकबर एंथोनी गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, वेरी नाइस सॉन्ग यहाँ पे चल रहा है। और इशाक जी लिखते हैं कि ये सादगी भी ऐसा हुस्न की नजर ठहरे, और चांद को भी शर्माते हुए बेनकाब देखा है, ये गाना बहुत लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानन जी लिखते हैं रूप तेरा मसाला भी और गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद अगला जो डिमांड है ये सुनते हैं।
1: हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग अमन सर, आज मैं बहुत दिन के बाद रेडियो हॉट स्टार से जुड़ी हूँ, तो आपको और ऑल लिसनर्स को वेरी वेरी गुड इवनिंग और शुभ संध्या। और अमन सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर बताइएगा। और मैं बहुत दिन बाद रेडियो हॉट स्टार से जुड़ी हूँ, तो मुझे भी आज एक गाना सुनना है। और आपका हर बार की तरह शो तो बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, और आज तो और ओल्ड इज गोल्ड है, तो सभी के दिल पर जो है ये ओल्ड इज गोल्ड के जो गाने होते हैं दिल पे राज करते हैं, तो हमें भी मतलब बहुत मन कर रहा था आपका शो सुनते सुनते कि मैं भी एक गाने की डिमांड करूं।
0: अच्छा,
1: तो सर मैं एक गाने की डिमांड कर रही हूं और वो गाना मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी।
0: ओके, ओके,
1: ओके। तो बस आप इस गाने को प्ले कर दीजिएगा। ओके,
0: ओके, ओके, ओके।
1: तो बस गुनगुना रही हूं। तुम जो चले गए

0: के बाद हो गया।
1: सॉन्ग तो बहुत अच्छा सुनाया आपने, पर आपने मेरे सॉन्ग को गुनगुनाया नहीं। अच्छा। क्या ये सॉन्ग अच्छा नहीं था?
2: ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी कभी कोई कोई मतलब गुनगुना नहीं पाता हूँ ना, इसलिए।

और शाह हुसैन जी लिखते हैं कि ये रिया खान जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे तो और ये कहते हैं कि दो लाइन और यानी कि कहिए रिया जी, ओके। और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है मुझे ये रिया खान जी का। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रिया खान जी आपने अपने गाने में इतनी मधु क्या बोलते हैं उसमें, यानी अच्छा मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उनको ये समझ में नहीं आया कि मेरा गाना भी पूरा वही गाए जा रही है। ओ जी जी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन डिमांड आएगा उनका, उनका ये मजा आ गया गाना सुनकर। और गजानन जी लिखते हैं कि तुम्हें दिल में बंद कर दे दरिया में फेंक दो चाबी, इसी बात पर। और यहाँ पे आमना खान जी लिखते हैं ये गाना भी मुझे बेहद पसंद है। अगला जो डिमांड है वो निक्की खान जी का है, और निक्की खान जी सुनना चाहती हैं ये प्यारा सा गाना दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो। इन बीच में लाइन इन कट गया था, पता नहीं कब कटा है, मुझे नहीं समझ में आया था, अभी अभी फिर से दोबारा कनेक्ट हुआ होगा।

0: बिल्कुल, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। सच में दिल अपने हाथ में नहीं होता है ना भाई, और यानी प्यार तो यानी कभी भी किसी से कहीं भी हो सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, मतलब कभी भी किसी से भी हो सकता है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मीरा जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, लाजवाब सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, थैंक यू सो मच, और रिया खान जी का फीडबैक आया हुआ है,
1: थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरे गाने को आपने प्ले कर दिया। तो बस चलते चलते अपने हॉट स्टार के लिए कुछ दो लाइन गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, अच्छा। यही

0: थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज।
1: ओके जी, आपने अच्छा गाया है। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी देखते हैं। अमन जी, आपका प्रोग्राम यानी कि तीन पीढ़ी सुन रही है, मतलब मेरी माता जी और मैं खुद और मेरा बेटा, तीनों एक ही पसंद है, सबकी पसंद है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि व्हेन लव हैपन इवन द हार्ट डजंट नो व्हाट डू यू सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा जी, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी, बिल्कुल। और निशान राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और निकी खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और यहाँ पे यानी खुशबू कुमारी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, और यानी प्रियंका जी की आवाज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छा गाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किन का जरा सा मुझे देखना पड़ेगा एक बार इधर। ओके, ये जो गाना है मतलब जरा सा देखना, फिलहाल पहले गाना को प्ले करते हैं फिर बताते हैं।
2: हम इंतजार करेंगे,
1: ये नीतू सरन जी का गाना है।

सर फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं हम इंतजार करेंगे, गाना मुझे बहुत ही पसंद है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि काश इंतजार इश्क का पैमाना होता तब उन्हें बताते इश्क कितना करते हैं हम। जी इसी बात पर आप ही का गाना प्ले करते हैं हम, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मतलब अनिल कश्यप जी का ये गाना है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल मेरा जीवन कोरा कागज कोरा हीरा के आत्मराम जी लिखते हैं कि ये निक्की खान जी के पसंद मुझे बहुत ही अच्छा लगे, दिल खुश कर दिया उन्होंने गाना सुनाकर। निशांत रायपुर लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है। और अशित पापे जी लिखते हैं कि ये कोरा कागज वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर दो दोस्तों की पसंद है, यानी यहाँ शिल्पा बेन जी और निशांत राय बोले जी दोनों एक ही गाना सुनना चाहते हैं, आ जा रे ओ मेरे दिल भर जानी। मतलब ये नूरी का गाना है, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और शिल्पा भी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमर जी मेरे डिमांड को प्ले करने के लिए। और ओके थैंक यू सो मच आपका भी। और नागेश्वर ठाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं यहाँ पे तेरे करीब आने का जी चाहता है और तेरे साथ उम्र बिताने का जी चाहता है। मोहब्बत तो बहुत है तुम्हें, बस तुम्हें जन्म से तुम्हें पाने की चाहत है। निशान राय बोले जी लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत है, शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये मुझे गाना बहुत ही शानदार लगता है, ये मेरा फेवरेट गाना है। ओके ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन सर जी आपने मेरे गाने को प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोगों ने फीडबैक दिया उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजब का इत्तेफाक है, आज आरजे वंशिका जी के प्रोग्राम में भी मेरे गाने के बाद जस्ट निशांत जी का गाना बजा था और इस टाइम भी ऐसा ही हुआ। और ये भी देखिए ना कि क्योंकि टॉप फाइनलिस्ट में हम और वो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, तो ये भी एक गजब का इत्तेफाक है। थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए।
0: जी जी बिल्कुल। और इसी बात पर यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि आ जा रहे मेरे दिल पर जानी, मुझे गाना बहुत ही उम्दा लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो दीपक कुमार गायकवाड़ का थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।

और फाइनली मैं बता दूं कि शाहिद अंसारी जी और यहाँ पे शौर्य सिंह जी को आज के मतलब यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बनाया जाता है। दोनों एक एक गाने सुन सकते हैं, जल्दी भेज दें अगर आप सुन रहे हैं तो।

और गीता शरण जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि अभी लॉटरी में नाम आपका आया हुआ है। अगर आप मुझे सुन रही होंगी तो मैं आपको कॉल कर, मतलब ये व्हाट्सएप पे कॉल कर दूंगा। प्लीज मुझे मैसेज कीजिए अगर आप सुन रही हैं तो, नहीं तो अगर आप नहीं सुनिएगा तो दूसरे का नंबर निकालना पड़ेगा मुझे।

0: बिल्कुल थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इनका फीडबैक भी आया हुआ है, शामिल करते हैं।
1: अमन जी, मेरा ये खूबसूरत गाना सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे सिर्फ मैं लिखती है थैंक यू सो मच, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये गाना मेरा फेवरेट गानों में से एक है। आत्मा आप देखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड के आज सभी गाने अप्रतिम लगे हैं। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मेरा मस्त, ये मस्त गाना है। और राहुल पासी जी लिखते हैं थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, गाना भी बहुत ही प्यारा है। निशांत राय बोला जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, राजेश सिंह की दादा जी का गाना है, पल पल दिल के तुम पास रहते हो, एंजॉय कीजिए।

ऑस्ट्रेलिया, उनका मैसेज मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो आज के जो यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है, यानी कि यहाँ पे निशांत जी और अनिल जी, इन्हीं दोनों को मैं कॉल लगा दूंगा, क्योंकि लॉटरी नहीं निकालूंगा, सीधे इन्हीं दोनों को कॉल लगा दूंगा।

फिलहाल अगला डिमांड मैं प्ले करता हूँ राहुल पासी जी का, फिर आते हैं तो फीडबैक शामिल करता हूँ मैं। राहुल पासी जी एंजॉय कीजिए इस गाने को, और इनके गाने के बाद मैं अपनी पसंद का गाना मैं गाना को इन प्ले करूंगा, और इसके बाद से दो मैं कॉल लगाऊंगा अनिल जी को और निशांत जी को।

बिल्कुल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और शिल्पा भी लिखते कि इन पल पल दिल के पास तुम रहते हो गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और सौरभ सिंह जी लिखते हैं कि अच्छा अपना गाना इन्होंने भेज दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं धन्यवाद हमेशा जी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर आप पहले मेरे पसंद गाने इन्जॉय कीजिए, फिर आते हैं तो ये नहीं कि काजल जी का गाना प्ले करके फिर मैं कौन लगाऊंगा। आई एम सॉरी काजल से काजी भूल गया था। और ये गाना मेरे सामने स्पेशल मतलब मेरी सुंदरता की मुराद यानी परी जी के लिए है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, मुझे बहुत पसंद है।

0: करके मुझको।
1: बहुत बहुत आपको बधाई हो भाई। चूंकि देखिए उनका जिनका लॉटरी में नाम आया वो तो गायब है, और चूंकि आप लोग दोनों यानी कि फर्स्ट सेकंड में थे तो मैंने कॉल लगा लिया, सीधी लॉटरी नहीं निकाला दोबारा।
2: जी नमस्ते सर।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: हम तो एकदम झकास बिलास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक रहने के साथ है।
2: हाँ हाँ, मैं भी चकाचक हो गया क्योंकि टॉप 10 में थे लेकिन लॉटरी में नहीं थे। फिर भी अगर सब्र होता है तो इंसान को कुछ भी मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
1: तो अब बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: आज परमार सर जी का भी जन्मदिन है आज, तो उनको भी बधाई। और थोड़ा सा हम लेट कर दिए, और अभी जो गाना चला आरजे सोनी जी का पसंद था वो।
1: वो मुझे बहुत पसंद है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने मतलब उस गाने को यहाँ पे प्ले करवाया था।
2: हाँ हाँ हाँ, उस शो को भी मैंने सुना था।
1: अच्छा,
2: क्योंकि रेडियो से लगाव थोड़ा बहुत गहरा है, बहुत अच्छा, ज्यादा सुनते हैं हम रेडियो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
2: हाँ हाँ
1: हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने उस गाने को यहाँ पे प्ले करवाया था, और यहाँ के सॉन्ग ऑफ द यानी डे की वो इन विनर भी बनी हुई थी इस गाने के लिए। लेकिन ये गाना बहुत ही प्यारा है ना। अगर हम कहें कि वो मुस्कुरा दे रहे, भाई मुस्कुरा दो ना प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मुस्कुराते रहो हमेशा।
2: हाँ
1: बिल्कुल। वैसे आप गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
2: आज सोनू निगम का मुझको दफना कर जब वो वापस जाएंगी।
1: ओ माय गॉड, इतना भयंकर गाना, मुझको दफना कर। ओ माय गॉड, इतना भाई क्या दिल टूटे आशिक की तरह गाना प्ले करवाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए गाना प्ले कर दिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
2: ओके, थैंक यू।

0: आपको कॉल लगाता हूँ तो आपका कॉल लग नहीं पाता है, लेकिन आप करते हैं तो लग जाता है। ऐसे क्या है भाई, आपके कैसा फोन है पहले बताइए, मेरा कॉल क्यों नहीं लगता है आपको? हेलो,
1: इसका प्रॉब्लम रहता है सर मेरे को,
0: हमेशा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, बताइए। मैंने यानी कि कल भी कॉल लगाया था, कल भी आपको नहीं लगा, लेकिन यह है कि आप सुनते हैं तो आप मुझे बाहर से कॉल बैक कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए आप करें चाहे मैं करूं, क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं?
1: सर नेटवर्क इशू है इधर, इसीलिए प्रॉब्लम।
0: ओके जी, तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सर आज नागपंचमी में कि तुमको बहुत सारे शुभकामनाएं मेरी तरफ से सब ऑल फ्रेंड को, और मेरे को शेषनाग का पे मूवी का गाना है ना, छेड़ मिलन की गीत मितवा, वो सुनना है।
0: ओके ओके,
1: सभी दोस्तों को डेडिकेट करना है मेरे को।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल अक्षर मिलन के गीत और आखिरी गाना जो आज के हमारे यानी विनर थे यानी कि सॉन्ग विनर थे हमारे यानी कि सौरभ सिंह जी, उन्होंने अपना गाना भेज दिया है, ये मेहंदी के बूटे। ये गाना मैं प्ले कर के जा रहा हूँ और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

जमी ताकत आने ताक जमी ताकत आला आम ताकत जगह ताकत आदि के नाक नाक ताक जमी ताकत नाक नाक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जम धारिता जग धारिता जन जाने को धारी दागू धारी के धारिता जग धारिता जन जाने को धारी दागू धारी के जम धारी।

हटूंगा वही, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन, तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।